हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीर की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीर दास की भक्ति रचना भी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग भैरव पर धमार सुनवाएंगे. कलाकार हैं अशोकाधर नंदी. आपके साथ पखवास पर हैं तापस दास. तो लीजिए प्रस्तुत है राग भैरव पर धमार. कलाकार हैं अशोकाधर नंदी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Dhamar in the Rag Bhairav. Our artist is Ashokadhar Nandi. Accompanying our artist on the Pahavaj is Taposh Das. Listen now to Dhamar in the Rag Bhairav. Our artist Ashokadhar Nandi.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरव पर धमार सुन रहे थे। कलाकार थी अशोका धरनंदी, आपके साथ पखवाज पर थे तापस दास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी आपके सामने प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी पर सरूद वादन। कलाकार हैं भवानी शंकर दास गुप्ता, आपके साथ तबले पर हैं पार्थ प्रतिम दास। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी पर सरोद वादन, कलाकार हैं भवानी शंकर दास गुप्ता।
1: यू आर लिसनिंग टू धमार इन द राग भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज अशोका धौर नंदी। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द पखावज वॉज तापोश दास। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ सरोद रिसाइटल। Listen to a sarod recital in the rag Basant Mukhari. Our artist is Bhavani Shankar Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla is Partho Pratim Das. Listen now to the sarod in the rag Basant Mukhari. Our artist Bhavani Shankar Das Gupta.

दुसानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बसंत मुखारी पर सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे भवानी शंकर दास गुप्ता, आपके साथ तबले पर थे पार्थ प्रतिम दास। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम

0: 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन द राग बसंत मुखारी। आवर आर्टिस्ट वॉज भवानी शंकर दास गुप्ता। Accompanying our artist on the tabla was Partho Pratim Das. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं तबला वादन, कलाकार है मुकेश जाधव। प्रारंभ में आपने तबले पर प्रस्तुत किया ताल तीन ताल सुनते हैं। आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर।

घिना धाड़ धा घेड़े नग तेरे किट घिना धाड़ धा घेड़े नग तेरे किट घिना धाड़ धा तेरे किट घिना धाड़ धा तेरे किट घेड़ा नग तेरे किट केड़े नग तेरे किट तक तेरे केड़े नग तक तेरे किट तेरे किट तेरे किट घिना धाड़ धा तेरे किट घिना धाड़ धा तेरे किट घेड़े नग।

अभी आपने सुना तबले पर ताल तीन तार, और अब सुनते हैं तबले पर ताल छपताल आकर मुकेश जाधव। आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना तबले पर ताल छपताल। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मुकेश जाधव द्वारा प्रस्तुत तबले पर ताल एक ताल। आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर।
1: डिंग डिंग टक टक धा धा टक टक डिंग धा धा धा डिंग डिंग ना ना ना टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक

अभी आपने सुना तबले पर एक ताल। कलाकार थे मुकेश जाधव। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे उदय शाहपुरकर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

Ni da ba da ni da.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग देश. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. Now listen to a flute recital in Rag Desh by Rohit Prasanna. The Vilambit Gat is set to Ek Taal and Drut Gat is set to Teen Taal.

0: और लीजिए अब सुनिए राग मधुवंती। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: नाउ लिसन टू राग मधुवंती। द विलंबित गत इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग मधुवंती सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल इन राग मधुवंती बाय रोहित प्रसन्ना। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में मेरिंतवरकु डॉक्टर नेदलूरी कृष्णमूर्ति गात्र कचेरी विन्नारु गात्र सहकारं श्री मल्लादि श्रीराम प्रसाद वादि सहकारं वायलिन पै श्री एम सत्यनारायण शर्मा मृदंगं पै श्री वी कमलाकर राव ई कार्यक्रमं आकाशवाणी विशाखपट्नं केंद्र समर्पण मीरु विंटुन्नारु भारतीय शास्त्रीय संगीतान्नी डीटीएच पै निरंतरं मीकु अंदिंचे चानल रागम.
1: You were listening to a Carnatic classical vocal recital by Dr. Nedanuri Krishnamurthy. He was supported vocally by Shri Malladi Sriram Prasad. Accompanying artists were Shri M. Satyanarayana Sharma on violin and Shri V. Kamalakar Rao on mridangam. This program was contributed by
0: Akashvani
1: Shakapatnam for Ragam 24/7 DTH. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, यह रेडियो चैनल रागम 24 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं. प्रस्तुत है मिश्र वाद्य संगीत. श्रोताओं, मिश्र वाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं नैंसी कुलकर्णी के चेलो वादन से. आपने प्रस्तुत किया है राग बागेश्री, आलाप जोड़ झाला और उसके बाद सुलताल में गत. आपके साथ पखवाज पर संगत कर रहे हैं माणिक मुंडे. सुनते हैं नैंसी कुलकर्णी का चेलो वादन राग बागेश्री.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे नैन्सी कुलकर्णी का चेलो वादन। आपने प्रस्तुत किया था राग बागेश्री। आपके साथ पखवाज पर संगत कर रहे थे माणिक मुंडे। श्रोताओं, मिश्र वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन वादन। आपने प्रस्तुत किया है राग मालकंस। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरविंद कुमार आजाद। सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन पर बजाया हुआ राग मालकंस।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे वायलिन वादन में राग मालकंस। कलाकार थे उस्ताद फैयाज हुसैन। आपके साथ तबले पर थे अरविंद कुमार आजाद। श्रोताओं, ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग रागेश्वरी में सितार वादन. आज के कलाकार हैं कल्याणजी दास. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अशोक मुखोपाध्याय. तो आइए सुनते हैं राग रागेश्वरी में सितार वादन, कलाकार कल्याणजी दास.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन द राग रागेश्वरी. Our artist is Kalyanjit Das. Accompanying him on the tabla is Ashok Mukherjee. Listen now to the rag Rageshri on the sitar. Our artist, Kalyanjit Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे कल्याण जी दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अशोक मुखोपाध्याय। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं माज खमाज दादरा। आज ही कलाकार हैं संयुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरिंदम चक्रवर्ती। तो लीजिए प्रस्तुत है ये माज खमाज दादरा, कलाकार संयुक्ता दास।
1: You were listening to a sitarist.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये माज खमाज दादरा सुन रहे थे। कलाकार थीं संयुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ मज खमाज दादरा। Our artist was Sanjukta Das. Accompanying our artist on the tabla was Arindam Chakraborty. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत

0: आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन राग किरवानी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय। राग किरवानी संतूर पर कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। Listen to a Santoor recital in Raag Kirwani. Our artist this evening, Pandit Tarun Bhattacharya. Accompanying on the tabla, Pandit Shubhankar Bandyopadhyay. Now, listen to a Santoor recital in Raag Kirwani by Pandit Tarun Bhattacharya.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जीआर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: सन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Thaniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behag Ragam, Adi Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the Ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत

0: 23 अप्रैल 1938 को जन्मी सिस्तला श्री राममूर्ति जानकी जी आज इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। जानकी जी वो हस्ती हैं जहां पर आवाज के साथ साथ भाषाओं का कोई बंधन नहीं रहा। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में अपनी आवाज दी और आवाज इस तरह से दी और इस कदर खूबसूरती से दी कि उन्हें नाइटिंगेल का खिताब दिया गया। जानकी जी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
1: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स, टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस।
2: No!
1: Rumba?
2: No!
1: Samba?
2: No!

लगभग लगभग 48,000 गानों में अपनी आवाज देने वाली, और आवाज भी इस अंदाज में कि आप उनका मॉड्यूलेशन सुने तो बस मजा ही आ जाए। हर एक अल्फाज की अदायगी इस कदर साफ कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वो किस जबान से और कहां से ताल्लुक रखती हैं। यही खूबसूरती एस जानकी जी की रही, और उन्होंने देश विदेश में इतनी अपनी प्रतिभा के नगीने बिखेरे कि आज हर एक कोई उनको याद कर रहा है।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया, अब हम वो सुनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन जब तक दुनिया रहती है उसका नाम कहीं नहीं जाता, उसका काम कहीं नहीं जाता। ऐसी ही शख्सियत है एस जानकी जी।

किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ तलत। तो अब सिलसिला शुरू करते हैं आपके मैसेजेस लेने का। हमारे पास मैसेज आया है टीडी मल्होत्रा का और आप हमें मोहाली से मैसेज कर रहे हैं। गगनदीप ठांडी ने हमें मैसेज किया है और यासीन अंजान ने हमें मैसेज किया है, साथ ही की है गीत की भी फरमाइश। अनिल कुमार गौहानकर का मैसेज हम तक पहुंच चुका है। ताज मोहम्मद ने हमें मैसेज किया है और सतीश अनेजा जी का भी हमारे पास मैसेज आ चुका है। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह का और मैसेज हमारे पास आया है सतेंद्र चंसौलिया जी का। आप हमें उत्तर प्रदेश जालौन से मैसेज करते हैं। पीएस नौहानकर का हमारे पास मैसेज आया है, कमल ने हमें मैसेज किया है और कल्पना झा एक गीत की फरमाइश कर रही हैं। साथ ही राजेश वर्मा ने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें आप हमें। भजन मऊ नाथ भजन से मैसेज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इसके साथ सुदर्शन शाह का भी मैसेज हमारे पास आ चुका है। नबी हसन का मैसेज हमारे पास आया है और आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत प्ले कर दीजिए। और इसी सिलसिले में आगे अकरम हुसैन प्रिंस ने भी हमसे यही कहा है कि हम अपनी पसंद का कोई गीत प्ले कर दें। कमल बालूजा जी का हमारे पास मैसेज आ गया है और संजय ठिंगिया ने भी हमें मैसेज किया है। स्वर्ण सिंह ने हमें मैसेज किया है ठाकुरावाला से और अब सुन लेते हैं आपकी ही फरमाइश का कोई एक गीत।

मोहब्बत रास आए ये भी एक बड़ी बात होती है, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो मोहब्बत ही होती है, वो रास आने वाली चीज ही होती है और वो पास रहने वाली चीज होती है, बस उसे सही जगह पर सही तरीके से बांटना जरूरी है। और अब वक्त ये है कि हम आपको बताएं और कौन कौन हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस कार्यक्रम में।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन। कलाकार थे कृष्णराम चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णराम चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन. कलाकार है अभय फगरे. राग है धनकोनी कल्याण. विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार है तबले पर सलीम अल्लाह वाले. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग धनकोनी कल्याण. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं बांसुरी वादन, कलाकार हैं अभय फगरे। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे। यह है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे अभय फगरे से बांसुरी पर राग मालकौंस। विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे, यू विल लिसन द राग मालकौंस।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन। कलाकार थे अभय फगरे। संगत कलाकार थे तबले पर नफीस अहमद। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय नफीस अहमद ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग झिंझोटी में आलाप। विलंबित और द्रुत गतें तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने।
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in rag Jhinjhoti by Rajiv Verma. First listen to Alap, followed by Vilambit Gat and Drut Gat, which is set to Teen Tal. He is accompanied by Prasun Chatterjee on tabla.

0: अभी आप राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग झिझकी सुन रहे थे, और अब सुनिए राग नंद में आलाप विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग झिंझोटी बाय राजीव वर्मा। नाउ लिसन टू राग नंद। आलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल, इज अकंपनीड बाय प्रसून चैटर्जी ऑन तबला।

0: अभी आप राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग नंद सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग नंद बाय राजीव वर्मा। ही वाज अकंपनीड बाय प्रसून चटर्जी ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। पूर्णिमा मोडक की गाई प्रस्तुत है कबीर की प्रसिद्ध रचना मन लागो मेरो यार फकीरी में।

हर दिन हर पल भारतीय संगीत का ये रागम डीटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की भक्ति रचना।

ये है रागम चैनल DTH भारतीय संगीत हर दिन हर पल। आइए सुना जाए मलय बनर्जी का गाया मीराबाई का भजन।